0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राज्यों
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

तर्को घममा परे धाई तर्कने ओय ओय ओय बिमा पम्मा क्या मुठु धर्कने तर्को घममा परे धाई तर्कने ओय ओय ओय बिमा पम्मा क्या मुठु धर्कने मत्यु माया पो हीरो नद